हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: प्यारा ओ बाजत को लगाना सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।
1: आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए पेश है राग नट भैरव पर ख्याल कलाकार हैं अर्घ्यो चक्रवर्ती आपके साथ तबले पर हैं सुब्रतो गुप्ता और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर ख्याल कलाकार हैं अर्घ्यो चक्रवर्ती
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the rag Nat Bhairav. Our artist is Orgho Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Shubroto Gupto and on the harmonium is Devashish Odhikari. Listen now to Khayal in the rag Nat Bhairav, our artist Orgho Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे औरघ्यो चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर थे सुब्रतो गुप्ता और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग भटियार पर सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसा। आपके साथ तबले पर हैं इंद्रनील भादुड़ी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भटियार पर सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसा।
1: You were listening to Khayal in the Rag Nat Bhairav. Our artist was Orgho Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla was Shubrata Gupta and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Bhatiyar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भटियार पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कौशिक बसाक। आपके साथ तबले पर थे इंद्रनील भादुड़ी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग भटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज कौशिक बसाक। Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, 24/7 DTH चैनल पर आप सुन रहे हैं रागम। हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत। प्रारंभ में सुनते हैं वायलिन वादन। कलाकार है वीजी जोग। आपने वायलिन पर प्रस्तुत किया राग कौशी कानड़ा। सुनते हैं विलंबित गत झुमरा में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है विनायक फाटक। तो आइए सुनते हैं वायलिन पर राग कौशी कानड़ा, कलाकार वीजी जोग।

गए थे वायलिन पर राग कौशी कानड़ा, कलाकार थे वी जी जोक, आपके साथ तबले पर थे विनायक फाटक, और अब सुनते हैं वायलिन पर मिश्र पहाड़ी धुन, कलाकार वी जी जोक, आपके साथ तबले पर है विनायक फाटक।

थे वायलिन पर मिश्र पहाड़ी धुन, कलाकार थे वीजी जोग, आपके साथ तबले पर थे विनायक फाटक। और अब मिश्र वाद्य संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं संतूर वादन, कलाकार है उल्लास बापट। आपने संतूर पर प्रस्तुत किया राग नटभैरव सुनते हैं। विलंबित गत छपताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं संतूर पर राग नटभैरव, कलाकार उल्लास बापट।

अभी आप सुन रहे थे संतूर पर राग नट भैरव, कलाकार थे उल्हास बापट, आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन. पहले प्रस्तुत है रूपक ताल और तीन ताल में राग चंद्रप्रभा. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a flute recital by Pandit Ajay Prasanna. First listen to Rag Chandraprabha in Rupak Tal and Teen Tal. He is accompanied by Ustad Rafiuddin Sabri on

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग चंद्रप्रभा सुन रहे थे और अब सुनिए तीन ताल में राग शंख ध्वनि। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन सावरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना। नाउ लिसन टू राग शंख ध्वनि इन तीन ताल इज अकॉम्पनीड बाय उस्ताद रफीउद्दीन सावरी ऑन तबला।

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शंख ध्वनि सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए धुन राग मिश्र खमाज में। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना इन राग शंख ध्वनि। नाउ लिसन टू धुन इन राग मिश्र खमाज। ही इज अकंपनीड बाय उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ऑन तबला।

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना। ही वॉज अकम्पनीड बाय उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, यह रेडियो चैनल रागम 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. प्रस्तुत है तबला वादन. आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं विकास पुरंदरे का तबले पर बजाया हुआ ताल तीन ताल. आपके साथ हारमोनियम पर है उमेश पुरोहित.

ದಿನ ಕದ ಕದ್ದಿ ಕದ ದಾಗಿನ ದಾತಕ ದಿನ ಗದಿ ಗನ ಕ್ರಾಂತಿ.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे विकास पुरंदरे का तबले पर बजाया हुआ ताल तीन ताल। तबला वादन के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विनायक फाटक का तबले पर बजाया हुआ ताल मत ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रशांत राजवाड़े और वायलिन पर है सुरेश गुजर। सुनते हैं ताल मत ताल, कलाकार विनायक फाटक।

धा धिंता कत्ती टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक ट

धा धागे धीना गीना तीना तकित धकित धागे धीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना धागे धीना

श्रोताओं, हम सुन रहे थे विनायक पाठक का तबले पर बजाया हुआ अलमत्तताल। आपके साथ हारमोनियम पर थे प्रशांत राजवाड़े, वायलिन पर थे सुरेश गुजर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 TH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौस पर शहनाई वादन. कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय.
2: This evening we present Hindustani instrumental recital. Listen first to a Shehnai recital in the Raag Mal Kaus. Our artist this evening is Gohar Ali Khan and Party. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मालकोस पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन। कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन। कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सात दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Shehnai recital in the Raag Hansadhwani. Our artist was Gauhar Ali Khan and Party. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

947 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है रुचिरा केदार। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग यमन सुनते हैं। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल हैं नाद ब्रह्म गुण सागर, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है ननदी के वचन वा सहन जाए। साथ संगत तबला सचिन राजोपाध्य और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग यमन, कलाकार रुचिरा केदार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रुचिरा केदार द्वारा प्रस्तुत राग यमन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं रुचिरा केदार द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है आज राधे तोरे, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है हूं तो बार बार। तो आइए सुनते हैं राग रामकली, कलाकार रुचिरा केदार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राग रामकली, प्रस्तुत किया था रुचिरा केदार ने। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीर्ष त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विरंच सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंदा धारिंदा धारिंदा जय जय मन मधारि धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपाधर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज केन्द्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति निति नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर

यज्ञ ध्वंस करि करत विपुल हुंकार उठत बारिध प्रलयंकर दामिनी दमकत कड़कड़ा वज्रक्रांत धा कत्ति धागति टिक्रधक टिक्राण क्राण क्राण क्रांत त्रिकृतिकृदा क्रांत धा क्रांत त्रिकृतिकृदा त्रिकृदा क्रांत धा क्रांत त्रिकृतिकृदा त्रिकृदा क्रांत धा सती भस्मले अंग अंग लपटावत शंख लोहित लोचन नाचत तांडव धाकृतक धुमकृतक तक्रां तक्रां धाकृतक धुमकृतक तक्रां तक धाकृतक धुमकृतक तक्रां तक्रां धान धिकृत धातृकृतिक गिंतरांधा

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन तिरकृतकता तिरकृतकता धित धित धे धे धे कृधेता धेता धल धल धल धल धिलांग घतान कृधा ट धुम कृतकता धिरकृतक धे धे धा किट किट धागे तिट कतिट धा कृतक तिरकृतकता तिरकृतक तिरकृतकता धा झम के झू मत सुंड फेरत गया मूर्ति गजाननम तिरकृधेत धे धे धेत गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेत जय शंकर सुमन एक दंत मूस वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धा कृतक धुम कृतक धक कृतक धुम कृतक गिरिंग धा धुम कृतक गिरिंग धा धुम कृतक गिरिंग धा कृतक धक धुम कृतक गिरिंग धा धुम कृतक गिरिंग धा धुम कृतक गिरिंग धा कृतक धक धुम कृतक गिरिंग धा धुम कृतक गिरिंग धा धुम कृतक गिरिंग धा गिन धा गिन तिर कृतक धा

बम बम शिव शिव अगर बम डिमी डमरू डमक डिमी डिमी डिमी बाजत डिमी डिमी डिमी डिमी डिगे गे डिमी डिमी धम करत धम करत धम करत करत गा धम करत करिंग बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धर ति धर ति धर धर धर धवल धार गंगा छ बुझार ति धिर करत करत करत धिर करत ता धिर करत धिर करत ता धिर करत धिर करत ता आधा जटा घटा मह चंद्र छटा गिरिंग धकट धा धा गिरिंग त्रिपुंड राजे मुंड मा वक्षस्थल साजे कर त्रिशूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मदमर शांत स्वरूप अनूप सकल सुरभूप मुकुटमणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिन ता धा ग्रधान धगत टिकट धकट धगत धान धान धगत टिकट धान बम्भोला बम्भोला बम्भोला बम्भोला।

धान धान धगत रिकृ धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान धान धगत रिकृ धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला।

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DGH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित गत झपताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present for you a santoor recital presented by Bipul Kumar Roy. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Bipul Kumar Roy first presents rag Megh, in which you will hear the alap, jod and jhala. The vilambit gat is set to jhaptal and the madhyalaya is set to teen tal.

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। मध्य लय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग मेघ। विपुल कुमार रॉय नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द मध्यलय एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय श्री विपुल कुमार रॉय। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: शो नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भानुजी देशपांडे की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई, प्रति भानुजी देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत बहिणाबाई रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है रघुनंदन पंशीकर ने, स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनीस ने।

रघुनंदन पणशीकर के स्वर में संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक पारंपरिक भक्ति रचना जिसे प्रस्तुत किया है वीणा भक्ति मंडल ने।

वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत एक पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में, रचयिता हैं संत तुकाराम महाराज।

संत तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पुष्पा रानड़े के स्वर में संत निळोबा राय की भक्ति रचना।

संत निरोबा राय की भक्ति रचना अभी अपनी पुष्पा रानड़े के स्वर में। कार्यक्रम की अग्रिभक्ति रचना है मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक हिंदी भक्ति रचना, रचयिता हैं नारायण स्वामी। सुधा मल्होत्रा ने इसे गाया है और स्वरबद्ध किया है मधुकर गोळवलकर ने।